0: तरी के लिए वाला के सिमकाल छाले ठेंज जे गोंगबो छुस हा जेजांग आ कोंग सब्जे दे योंबी दा ओ जेजांग किन टेबलो जे देने योंग दुगे योंग आ जीशा जिबे जांगे गोची जे कोंज निम दो लो आ दे सुचो दा
1: लि योंग नांग जिन नोन बे जो यी किन सिन
2: लि योंग नांग जिन नोन बे जो यी किन सिन
1: 这是杨小腿边的小插机器。
2: 这是杨小腿边的小插机器。
1: 他动前子找位就做点心。
2: 他动前子找位就做点心。
1: 皮大脸将重点被哭得穷穷出八千。
0: 啥地方下雨吧？不是，他们下雨吧？哎，几天下雨呗？
1: 旅游南京弄白着一。
0: 我让这虫子拉不住左边去了。俺这虫子不跟他没事，刘家要打，高家又不给我爹落准钱用过去，拉不着忙不送子，今天规矩些差不多，爹妈在今天看见重庆那里去，来不成是有的不，他里恰恰呢，今天上班点几个工不休息，你得中个油的，
3: 钱俺大家能不好日不，他想俺爷拿点点的，他爸爸老钱不的，咋个去了？学生嘛，是不是他让我这样？
0: 啥拿罗用管不着吧？你这小马屁！
3: 阿大老友，哎呀，不错，我看不上。天天说这个老子年轻做球，年明了勤奋事业，日勤打，明了粉，粉丝能干了一个大大，我的天羡慕的嘞！要是给黄皮青白同打的，看上做老子黑人队的年轻球，老子拿买卖的制度吧。
4: 绝了，就让个老子参谋听过预备了。
3: 一用过去，你黑人的性格大。都去，你没怎么说，让给俺老弟他去追的，让给孩子呢，你他去教。
4: 用啊，
3: 我儿子瑞阳老子也多，咱们瑞阳老子也对呗。啊，吕子，吕子老子年轻做数学教，地理哦，瑞阳老子第一，用对。
5: 用啊。
3: 俺最近在哪呢？先要去睡的个嘞啊！
2: 爹，
3: 我呀，起得早的，要休息。嘿，过去一节，先等个人，用多